0: स्वतंत्र बराबर छ वागे हिंदी में समाचार दिल्ली केन्द्र पर रिले करीशुं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम समापन में रायधन रवा कोरंगा ने सांभळी शब्द रचना छे गंगा सती।

श्री राम तथा रावण की सेनाएं एक दूसरे से जूझ रही हैं। एक ओर श्री राम की जय जयकार तो दूसरी ओर रावण का जय घोष गूंज रहा है। वानर और रीच महाबली राक्षसों को मारते काटते धराशायी करके उनके उदर चीर देते हैं, फिर उन्हीं के मुंडों को अस्त्र के रूप में फेंक कर औरों के कपाल फोड़ देते हैं। असुरों को कुचलते मसलते वानर मेघ के समान गर्जन करते हैं, जिससे रावण के सैनिक विचलित हो जाते हैं। अपनी सेना को त्रस्त और भयभीत देखकर रावण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भयंकर हुंकार करता आगे आगे दौड़ता है। वानरों द्वारा फेंके गए वज्र के समान पत्थर उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। भीषण क्रोध से कांपते हुए उसने जब वानर और भालू सेना का संघार करना प्रारंभ किया तो वे त्राही त्राही कर उठे। पूरी सेना श्री राम की शरण लेने को जैसे भाग खड़ी हुई, लेकिन सभी दिशाएं रावण के भांति भांति के अस्त्रों से आच्छादित हैं। वानर भालू भागकर जाएं भी तो किधर, लगता है वे चारों ओर से घिर गए हैं।

0: हमने जब श्री राम चरित मानस गान सामने रहा था, स्वर आप भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी भूज केंद्र छे। श्रोता मित्रों बराबर 6:55 मिनिटे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र पर थी रिले करीशुं।
1: आकाशवाणी

0: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन हो रहा है। इस रेवोल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एविलॉन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया,

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पूर्व परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट नीट डॉट

अपलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋषभ घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गई है। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान के मैच 2-2 से

0: धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आपका विश्वास बढ़ा है।
1: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं। साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हवे पंडित राजन साजन मिश्रा नु स्वर प्रस्तुत है।

आकाशवाणी भूज समाचार कल्प में शामिल थे। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफो साथ बातचीत करते स्लोवाकिया राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी साथ मुलाकात करते। प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस की यात्रा बाद यात्रा बीजा चरण में गईकाल रात्र स्लोवाकिया यात्रा अंतर्गत ब्रातिस्लावा पहुंचा था। तेमणे कहा कि आ यात्रा थी बंने देशों ना संबंध वधु मजबूत थशे और सहयोग में नवा क्षेत्रों विषय विचार विमर्श थशे। सोशल मीडिया पोस्ट में जणाव्युं कि तेओ स्लोवाकिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ रचनात्मक चर्चा माटे उत्सुक छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रप्रमुख इमान्युएल मैक्रोन ने फ्रांस में

अभी संपर्क क्षेत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पूर्व परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एगस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से।

0: से पकड़ेगा।
1: हॉर्मोन जल डेंगू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमरीका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में

కక్షిస్తే మీ ఐశ్వర్యవేది. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

0: मैक्रॉन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक है। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री युराय ब्रानर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रतिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लोशनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दावन में जी सेवन शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में जी सेवन के सदस्य देश फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों

0: थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पूर्व परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बातचीत सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली

0: सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों

0: माध्यम से एक तेज बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहे हैं जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहे हैं। सुकैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बात खेलेंगी बैडमिंटन में।

दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वही ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ए में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया।

प्रहलाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेक्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश। देशबंधु ने लिखा है, इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल। वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है, भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं। कहा, देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13

भारत में ही बनेंगे राफेल, अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है। आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की यह यात्रा एक बहुध्रुवीय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुप्त ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पेश का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिन्दुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद

तेरह शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जालंधर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्य प्रणाली आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पूरा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए।

खुस्रो मृदंग जब भाग पड़ी अने तबले जी शोध क्या तबला के नरघा तरीके पर ओळखे में अचेतो तबला बनावनार केंजो चामड़ू मढनार जो कहे इनके डबघरो चवाजे अने प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन अने किशन महाराज जो नाम खूब ज प्रख्यात है। हणगाल करो डफ डफ ए पण एकडो सरस मजा जो वाद्य है अने राजस्थान राज्य साथे डफ जोड़ेलो है अने उत्तर गुजरात ने इनके डायरो के घेरो नाम थी ओळखा जाय तो हणगाल करी त्रासा जी तो त्रासा ई तांबे जी नगारे जड़ोज रहतो अने पतली सोटी थी वजाय में अचेतो अने त्रासा थी खूबज सरस मजा जो अवाज उत्पन्न थी है तो अणकार उत्पन्न थी है तो हणगाल करू गायन वाद्य जी तो सौथी पहला मंजीरा दरेक लोक संगीत के भजन में मंजीरे जी खूबज उपयोगी है। मंजीरा आंगरी में पहरी अने सूतर जी दोरी वड़े वीटाई अने सरस मजा जो अवाज करे ने अचे तो गुजरात में जो को अने कच्छ प्रदेश में खास भजनावली थी है अने मंजीरे जो उपयोग खूबज थी है तो अने सौराष्ट्र जा पढ़ार गुजराति जा जो को माड़ो ही अने जो मंजीरा रास पण खूब प्रख्यात है। हाँ बे गण वाद्य जी बात करू तो करताल नरसिंह मेहता श्री कृष्ण जी भक्ति ला करीने करताल जो उपयोग करता हुआ करताल 12 इंच लम्बा अने 3 इंच पोड़ा लकड़े जी टोकरे में जा बनाए में अचेता अने चारे बाजू चक्र भी लगाए में अचेती अने अंगूठे में पहरी ने खूब सरस संगीत उत्पन्न करे में अचेतो। हाँ गाल करू माण माण ई प्रकार धातु जे साकड़े जो मुख धराइंदो हुए एड़ो मट्ट जड़ो हुए मध्यकाल में प्रेमानंद पर माणभट्ट तरीके ओरखा नवा अने गुजरात जा आधुनिक माणभट्ट तरीके वडोदरा जा धार्मिक लाल पंड्या ओरखा जेता अने माण पण खूबज सरस अवाज अने रणकार उत्पन्न करे तो गाल करियो कांसी जोड़ा तो मंजीरा थी थोड़ाक प्रकार में वड्डा कांसी जोड़ावे कांसी जोड़ा जी घोड़ाई अने ऊंचाई ओछी रहे अने साम सामे अथड़ायू रणकार उत्पन्न थी है। हाने गाल करियो रमजोड़ जी तो रमजोड़ ई घुघरे जो को प्रकार है अने घणे बड़े घुघरा भेड़ा थई अने पगजी पिंडी ने बांधी ने अच्छे अने इनके चवाजे रमजोड़। हाने गाल करियो झालर जी तो पित्तल अने स्टील जे मिश्रण थाली जेड़े आकर जा घोड़ झालर बनाए में अच्छे था अने इन जो ध्वनि उत्पन्न करी ने एक आध्यात्मिक वातावरण उभो करे में अच्छे तो मध्यकाल थी विशेष जडे विजय घोष तरीके सवारी निकले तभी ही वाद्य वजाय में अची दू अने गामड़े गाम में साधु संत के टेलिया महाराज जी घरे जडे जडे भिक्षा मंगेला वेंदा हुआ तभी झालर वजाय जो संकेत करी दवा। चलो घन वाद्य है डांडिया रास के घर में सिराय लकड़े थी के पेतर थी भनेले डांडिये जो स्वर उत्पन्न थी है तो लकड़े जा डांडिया मस्त ऊन जा शणगारे में अच्छे अने रास अने गरबा रमू तो मिठो मिठो अवाज उभराजे। हेन उपरांत झांझ घरियार घंट घंटड़ी थाड़ी टोकरी घूघरमाड घूघरो चीपियो इमेरे घन वाद्य जा उत्तम उदाहरण है। तो भाभी ही गाल थी गुजरात जी लोकवाद्य जी दरेक संगीत लोकवाद्य साथ संकड़ेलो है अने तनेज पाके माने जी मजा आ जाती अना लोकवाद्य जी गालियो तो जाम के नहीं पर हाँ टेम थे रिवा रजा गिने जो आकाशवाणी जी भुज केंद्र तानो ई प्रसारण ही सोया थे आवया विष्णु गोड़ हलो करीम गायो में पा मिलता होता अने मिलता रहो त्या सुधी आके अज्जी गाल कड़ी लगी सिमुके चौजा आंजी आने आज परिवार जो ध्यान रख जा अच्छी जा।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: सभी श्रोताओं को विनेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं
1: जीवन में

0: लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसोली पोस्ट खेरसा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतिम भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार बंदली बिमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
0: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बीबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा और सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: आप सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, आप सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और एवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800-44-0559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: पेड़ों की घनी इच्छाओं में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं भी सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना।

0: हंस रहा हूँ। कौवे ने दाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठा कर दो तो ग्यारह हो गया।
1: वो जोर से हंसा बुद्धू कौवा।

0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत है, आप कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया। वो भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: मुझे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चमक उठा, जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: कितने सुंदर कंचे।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।

0: नाचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
2: पप्पो, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
1: मास्टर जी?
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी रेलगाड़ी 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रो के उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ, बता। डरना मत।
0: वो मास्टर जी ने देखा

0: देना।
1: मास्टर ने कहा वो छिछकता रहा।
0: बेंच
1: बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से रहेगा?
2: ध्यान दूंगा।
1: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
0: बच्चों एक एक करके आओ,
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
3: पहले मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से पप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, अरे लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
3: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट तब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट तब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलिया सिकंदर, तू अत्यारे दरिये जाई छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारिये न कराय, समझ्यो?
2: के बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलिया सिकंदर, तू अत्यारे दरिये जाय छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारी न कराय, समझ्यो?
2: के बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: शम्मा फिल्म गीत रजू करी छे, स्वर अपी रहे छे सोरैया।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट तब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट तब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलिया सिकंदर, तू अत्यारे दरिये जाई छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारिये न कराय, समझो?
2: हे बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेलवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया मां देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जान कर दी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित मां प्रसारित
4: कार्यक्रम। हवे पछीना गीत ने स्वर आपी रह्या छे सुरैया फिल्म अफसर।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलियास सिकंदर, तू अत्यारे दरिये जाई छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जमाए अने माछी मारिये न कराए, समझियो?
2: के बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेलवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था।

0: साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अलिया सिकंदर तू अत्यारे दरिये जाय छे?
1: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछीमारी न कराय, समझ्यो?
0: के बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज

0: पैसों में आ गया।
1: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
0: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलिया सिकंदर तू अत्यारे दरिये जाय छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछीमारी न कराय, समझो?
2: के बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो एक गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरियामां देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहितमां प्रसारित।

प्यार की जीत फिल्म गीत हाना जब समड़ी रहा था सुरैयाना कंठे। श्रद्धांतों आज अभिनेत्री सुरैयाना जन्मदिवस निमित्ते तिना पर आधारित केटला गीतों आप मनोरंजन कार्यक्रम अंतर्गत आकाशवाणी भूज केन्द्र पर थी सांभळी रह्या छो। कार्यक्रम समापन में फिल्म श्रमण गीत प्रस्तुत है।

गीत आप सुन रहे थे, एक कलाकार था जावेद अली, ऋचा शर्मा ने साथी चंदी चैंपियन गीत संभाली है प्रीतम दर्शन रावल कौसर मुनीर ने स्वरमा।

0: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ब्रिटनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई है। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरु मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के

रचनावते अविनाश्वासिनी सुगम संगीत में कार्यक्रम समाप्त थाय छे। प्रसारण आकाशवाणी ने अमदावाद, वडोदरा, राजकोट अने भूज केन्द्र पर करवामां आव्युं। 1:20 સાંભળશો ગુજરાતીમાં સમાચાર।

वह भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने एल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फिट्जो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लोचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई है। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन को यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व के

0: पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमरीका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में 16.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजय शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अनलिनों के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइन माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर आयोजित

0: 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिका और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। उड़ीसा में 3 दिन तक

0: किस रेंज में, राजा का खास पकवान जैसे पोला पिठा, आरिसा पिठा, मंडा और काकरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेती बाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्ल्ड के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन में आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वाइनबर्ग ने 88वीं मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंटाल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवड़ा को बधाई दी है। राज्यपाल ने विकल्प मिक्स टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रैटिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिजो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अनियमित की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्ल्ड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

निगम उपाध्याय अमी कोठी जाने आप सामने रहे था। रचना थी तुषार शुक्लानी। गुजराती गीतों कार्यक्रम समाप्त थाय छे। प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट भोज केन्द्र पर करवामां आव्युं। बपोरना 3 थया छे। अमारी आजनी प्रथम सभा अहीं समाप्त थाय छे। फरी मळीशुं आल्बर्टस पर सांजे 5 वागे अमारी बीजी सभा आरंभे। ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈએ, સાંભળતા રહેશો અમારું ડીટીએચનું પ્રસારણ। અત્યારે રજા આપશો, નમસ્કાર।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी सच्ची सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फित्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई है। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की पहली भागीदारी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, इवियन, फ्रांस।
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोल, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडब्बू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडब्बू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और एल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इस लक्ष्य में तय प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना कैबो वर्डे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:15 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। I'm Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Narendra Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership. Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
1: Responsibility और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए. रक्षा सहयोग हमारे गहरे अपरिचित विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया. इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी.
3: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, and the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Modi reached

0: मोबाइल सुरक्षा में खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: छेल्ला 12 वर्ष थी अहीं विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरान, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण, सेवा अने सुशासन, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ। આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ। 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના।
2: गुरु गोविंद कार्यक्रम में हम

में सोने दवाइया दीवान फिल्म अंतिम गीत साथ है आज गुमार कार्यक्रम समाप्त करने जानकारी रजापो प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर करवा।

भाई तुरी ने फिल्मा गवाई लोकगीत साथ ही आज नो लोक संगीत नो कार्यक्रम में समाप्त कर रहे रजे आपसो प्रसारण आकाशवाणी ना अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर थी तुलना दिन। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा सिंधी में समाचार आप सांभ।

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी है। सिंधी खबरों से गबना दीपा गुरनानी सबका अवल अहम खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासिलोवा जे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको विच ने वफदी सतह जे गाल बोलते 52 जी 7 शिखर सम्मेलन अब खां फ्रांस जे एवियन शहर में शुरू थी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष सम्मेलन में शिरकत करो। भारत ने अमेरिका ईरान विच में शांति समझौते जो स्वागत करो। प्रधानमंत्री चयो इन से खिते में शांति स्थिरता बहाल देंगे। ब्रिटेन 16 साल का नंबे उम्र के बार सोशल मीडिया पर पाबंदी मिली। फीफा विश्व कप अज शाम स्पेन जो मुकाबलो काबो वाडे से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको अज स्लोवाकिया के ब्रासिलोवा में वफदी सतह से गालबोल कई। गालबोल का पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कन्दे बिन्ही मुल्क लागापन के वसीय बाने गलवारे के सतह तक वधण जो फैसलो वरतो है। उन साहिब बिन्ही मुल्क विच में रक्षा सहकार गहरी आपसी विश्वास रणनीतिक मेलाप जो नतीजो है। श्री मोदी बिन्ही मुल्क रक्षा खेत में करारनामे के दस्तखत करा है। उन एआई जो मुस्तकबिल न सिर्फ नवाचार पे बल्कि विश्वास जिम्मेवारी इंसानी वकार पे भी आधारित होने घुर्जे। प्रधानमंत्री
1: टेक्नोलॉजी हमारे भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए अनुरूप इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं मिलेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: इन मौके पर श्री रॉबर्ट फिको भारत के तेज आर्थिक इजाफे डिजिटल तब्दील है एआई में थे तरक्की की सलाह कहने चाहिए तो उन केतर ही मुख्य क्षेत्र में तरक्की याफ्त मुल्क के पुठिया छो है। उन साहब चाहिए तो भारत के मुतहद राष्ट्र काउंसिल में डायमा मेंबर के रूप में शामिल करें घुर्जे। 52 जी 7 शिखर सम्मेलन अभी का फ्रांस के एवियन शहर में शुरू थी रहा है। फ्रांस जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अब जी 7 मुल्क के नेताओं से गड यूरोपियन काउंसिल ए यूरोपियन कमीशन के वडेरन जो पे रस्मी तौर से स्वागत कलो। गौरतलब हो तो भारत ब्राजील दक्षिण कोरिया केनिया ए मिस्र यूक्रेन कतर तोड़े मुतहद अरब अमीरात के पे शिखर सम्मेलन में नींद बिनी वही है। वधीक अहवाल असाजे नमणीदार का।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। उनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत के ओलह विषय में जारी छिटकाने समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान विच में थे समझौते जो स्वागत कर रहा है। इनमें छिटकाने से समूरे विश्व में गंभीर आर्थिक बुहरान पैदा थे हो। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो भारत के उम्मीद आ इन समझौते के अमलीकरण से खिते में शांति स्थिरता बहाल देंगे। मुतहद जनरल जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस पे इन समझौते जो स्वागत किया है। अमरीका और ईरान विच में 107 दिन का जारी जंग समाप्त करण के समझौतो थोड़ा है। इन साल हॉर्मूज स्ट्रीट सामूहे रस्तो जुम्मे ढीह का खुली वेंदो और ईरान के बंदरगाहन का अमरीकी नाकाबंदी समाप्त थी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल रात प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते थियण की पधराई कई। शांति समझौते पे 19 जून के दस्तखत कया वेंदा। शांति समझौते की पधराई बैद अज घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज कई गई। बॉम्बे शेयर बाजार जो सेंसेक्स 736 पॉइंट की वाध से ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கொண்டு தெரியாத அப்சர்ட் வந்தே கொடுத்து இதுபிறகு தவா ஆகாஷ்வாணி தான் புதிரையாயும் இதுபிறகு தவா அசஞ்சி யூடியூப் சேனல் ஏ நியூஸ் குஜராத் ஏ புதி சகோதா வதிக கபரங்கிலே தவா அசஞ்சி வெப்சைட் நியூஸ் ஆன் ஏர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் கே

0: social media platformen za dostavljanje tega vam dej marjeli, predan vam prekir iz karmer in na kademu bi hitko vado lomu delajo. Srka trebate sebej tel refineru, dobi kače tele dej bandar sa ga do mukkamal sa ga zanka nukari rejvahin, petrol and diesel da munasi bandar taya rakhyo gavahe. Ule isha je vejjar je vaakyan te, di nai deli ni muntazim, अंदरूनी वजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम एंड कुदरती गैस वजरा जी जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा बुधवार को गुजरात चैन नियम में 1 करोड़ 84 लाख सिलेंडर विच किया गया है। रेलवे गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन वास्ते 140 करोड़ रुपए की कवच योजना के मंजूरी दिनी है। उत्तरी रेलवे के अंबाला डिवीजन लाइन पर 201 करोड़ रुपए की कवच योजना के मंजूरी दिनी है। तमाके जाने का कवच मुल्क में तैयार कर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आहे। उत्तर प्रदेश के जेवर में आए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तजारती हवाई उड़ान अड्डे का शुरू हुआ है। नागरिक हवाई उड़ान मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू अड मोहरती जलसे में चयन कर पहले तबके में इन सब हर साल 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिर की रहेंगी। आयुष मंत्रालय अज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शानदार आयोजन में दस्तूरी तौर कार्यक्रम जो आगाज किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में खबर रविशन के जाना है मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरबराही में कोलकाता के रेड रोड के मुंतजिम किया वेंदो। उन्हें जाना है इन मौके से 45 मिनट जो योग प्रोटोकॉल मुंतजिम किया वेंदो। एक अहवाल
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: माली वजीर ने निर्मला सीतारमन से मुल्क में अनाज जो जोगो जखीरो है अलेनो जे खराब असर के बावजूद अनाज के का भी कमी यानी अनाज को न थी अज नई दिल्ली में मुंतजिम माइंड टू माइंड सम्मेलन में माली वजीर ने चाहे तो खरीफ फसल में जोगे मकदार में बाढ़ मैसर आए। सुश्री सीतारामन जाना तो ईंदड़ रबी फसल में बाढ़ की रसद इन साल नव बरखा शुरू थी। आबहवा महकमे सुबह में उत्तर ओभरी भारत के कुछ हिस्सों में ओलह बंगाल के हेठियों वाले इलाकों में तेज बरसात की अगवती कई है। राजस्थान ओभरी उत्तर प्रदेश ओडिशा ओलह मध्य प्रदेश में अज गजगोड़ का तूफान लगने का इम्कान है। फीफा विश्व कप में अज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कांगो वादे के खिलाफ खेलेंगे। यह मैच भारत के वक्त मुताबिक रात 9:30 बजे खेली वेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा पर्व के मौके पर मुल्क वासियों को शुभकामनाएं देने वाले हैं। श्री मोदी आवाम की खुशहाली और बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की। आखिर में अहम खबरों पर नजर विझना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रसेल्स के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको विषय वक्त सदा जी गाल बोल वाहन जाओ जी सेवन शिखर सम्मेलन अज का फ्रांस के एवियन शहर में शुरू थी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सम्मेलन में शिरकत कर भारत अमेरिका ए ईरान विच में शांति समझौते का स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन खिते में शांति और स्थिरता बहाल देंगे। ब्रिटेन सोलन साल का मंदिर मुझे बारे में सोशल मीडिया पर पाबंदी मरे। फीफा विश्व कप में अज शाम स्पेन जो मुकाबलो काबो वाडे से आकाशवाणी का सिंधी समाचार जो इवो अंक के समाप्त नमस्ते।

0: 소리 좀 해서 들리는 소리. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए अनुरूप इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिक्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के अवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बना।

0: खबरें पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक बजट नोटिफिकेशन दिया है, उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा में हुर्मुज जलबंद मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अम्बाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत है आज में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने मध्यम वर्ग में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुख्य कार्यक्रम 21 जून न रोज कोलकाता में योजाशे। केंद्रीय नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अनाज में पूरतो भंडार उपलब्ध अल नीनो की प्रतिकूल असर छता अनाज की अछत नहीं सर्जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेठ 1 करोड़ की वधु घरों ने मंजूरी अपनावी, जेनाथी लाखों भारतीय परिवारों ने घर मालिकी की आकांक्षा वास्तविकता में परिवर्तित थी। भारतीय रेलवे गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन माटे ₹140 करोड़ ना कवच प्रोजेक्ट ने मंजूरी अपी। वैश्विक पड़कारों की चर्चा सहित मुद्दाओं साथ फ्रांस में योजना G7 समिट में आवतीकाले प्रधानमंत्री उपस्थित रहेशे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कांतिलाल अमृतिया कच्छना भूज में सरहद सुरक्षा दल BSF 176 बटालियन खाते वृक्षारोपण कर वन कवच निर्माण प्रारंभ कराया। कामधेनु यूनिवर्सिटी में कुलपति डॉ PH टाक हस्ते पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय भूज खाते पशु सारवार संकुल पुनर्स्थापन अनावरण करायु। मांडवी तालुका में कोड़ा गांव में लंपी स्किन डिजीज जेवा जीवाणु चेपी रोग थी पशुओं ने सुरक्षित राखवाना हेतु थी जिला पंचायत भूज हस्तक में पशुपालन विभाग द्वारा विशेष रसीकरण कैंप योजायो। जिला मथक भूज में हमीसर कंठी प्रभारी मंत्री कांति अमृतिया और राज्य मंत्री त्रिकंडे छांगा की उपस्थिति में भारत परिवर्तन दायका 3.0 प्रदर्शन ने गईकाले खुल्लो मुकायो। चौमा में आगमन वच्चे आ वर्षे अलमीनो सक्रिय थवाना चिंताजनक वर्तारा ने पगले केन्द्र सरकारे देश में सौथी वधु प्रभावित थनारा 197 जिल्लाओं की याद में कच्छ नो समावेश करी तेने अति संवेदनशील श्रेणी में मुक्यो। आ साथ मुख्य समाचार पूरा थे। नमस्कार।

Divisione una macchina di nuovo buon, come c'è tra Audi e Roma Ocean. Girate su Audi Division, ma su Dishi Train su Rukhsha Pranali non vi è poco più attosci. Lake Nia Chaki Kovac e su Dishi Riti Vixit Automatic Train Protection ATP Pranali c'è, G Salamati Vida Roma Ti Vixit Mai c'è. Te Signal Passing Act Dengin Nero Kua Mamma Dut Kara c'è. A su Rukhsha Parastiti Unita Roma Te Jarur Pare Thare, आप में ब्रेक लगावे छे गंभीर परिस्थिति में ट्रेन की गति ने नियंत्रित करे छे और अथड़ामण ने जोखम नोंधपात्र रीते घटाड़े छे। अमदावाद साइबर गुना शाखाए नीट पेपर मामले त्रण आरोपी ने धरपकड़ करी छे। राजस्थान के पकड़ाये बे आरोपीओ सोशल मीडिया पर चैनल चलावी नीटनु पेपर वेचता हता, ज्यारे बिलाड़ी पकड़ायेलो आरोपी नीटनु रिफंडना नामे छेतरपिंडी करतो हतो। अमदावाद गुना शाखा

0: अच्छी तैयारी पे थी। राजकोट महानगर पालिका एक साल के लिए इंटेंसिव कैंपेन शुरू कर रही है। इसके आधार पर जहाँ भी खाने पीने की जो व्यवस्था है हर एक में एडल्टेशन ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, इस लेवल का हमारी मेडिकल टीम्स चेक एंड हमने एक टीम जो फॉर्म करी है कंटिन्यूसली गाइड करती रहेगी और राजकोट सिटी में लोगों को अनएडल्ट्रेटेड क्वालिटी का फूड मिलकर इंश्योर करेगी। हमारे पास पावर्स है एनालाइज करने के और इवन सील करने के यूनिट्स। अभी हमारी 8 टीमें बन रही है, वो अपनी अब फूड टेस्टिंग लैब भी शुरू करने जा रहे हैं।
1: बार वो सुशासन विकास ना अने जन कल्याण ना अभियान अंतर्गत राज्य ने विविध जिलों में अनेक कार्यक्रम योजाई रहा है। पाटण खाते आज योजना विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में जिला प्रभारी मंत्री स्वरूपजी ठाकुर स्वदेशी वस्तुओं उपयोग करवा तेमज स्वच्छता वृक्षारोपण जल संरक्षण जेवा जन आंदोलनों में वधु ने वधु नागरिकों ने जोड़वा अपील करी। छोटा उदयपुर में महिला और बाल विकास मंत्री मनीषा वकीले पत्रकार परिषद नु आयोजन कर्यु। तेमणे छेल्ला 12 वर्ष दरमियान देश ना सर्वांगी विकास गरीब कल्याण महिला सशक्तिकरण युवा अवसरो आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत ना संकल्प ने साकार करवा थयेला ऐतिहासिक कार्यो अंगे विस्तृत माहिती आपी हती।
2: सरकार नु एक ज लक्ष्य रह्यु छे के दरेक योजनाओ नो 100% लाभ लाभार्थी सुधी पहोंचे। डीबीटी द्वारा बधा ज योजनाओ ना लाभ लाभार्थी सुधी पहोंचे अने वछोटिया ने वच्चे थी हटी जाय एवी रीतनी आ योजनाओ डीबीटी द्वारा शुरू करवामां आवी छे। आपणा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ना मंत्र मात्र कागळ पर नहीं परंतु वास्तवमां कॉन्क्रीट स्टील ऑप्टिकल फाइबर अने लाखों करोड़ों रूपया मूड़ी रोकाण रूप में साकार थता जोया छे।

0: जी बोलो तुम।
1: अभी का जो फोरकास्ट है 15 जून से लेकर 14 अगले 7 दिन के लिए, इसमें गुजरात रीजन में मेरे जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है सूरत नवसारी वलसाड दमन तापी से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट्स आगे है उसमें एक दो स्थान में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। तो अगले 7 दिन अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। मुरादाबाद के लिए आज जनरली क्लाउडी स्काई का पूर्वानुमान दिया गया है,

राज्य ने उद्योगों में वैश्विक केंद्र बनावाने नियम साथ गुजरात औद्योगिक नीति 2026 जाहिर कराई। अहमदाबाद रेलवे मंडल में 140 करोड़ रूपये ना खर्चे कवच परियोजना ने मंजूरी। नीट पोर्टल लीक मामले अहमदाबाद गुना शाखा ने 3 आरोपियों की धरपकड़ करी। दक्षिण गुजरात में आगामी 3 दिवस हवा वरसाद की आगाही। प्रथम प्रवाड़े प्रथम गुजरात राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2026 में खिताब जीत्यो। हवे पछी आप रात्रि 7:50 राष्ट्रीय समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार।

रवि रामसुता मित्रों मित्रों गमन चलो कार्यक्रम में आप तमाम खेडूत मित्रों और श्रोता मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों कोई नु सारू आंबुवाड़ी जुए तो तेना पर अपनी आंखों ठरी जती हो अथवा तो मित्रों कोई नु सारू नारियल नु उत्तम प्लांटेशन जुए तो ये प्लांटेशन अपना मन में वसी जाए અને એટલા માત્રથી જ આપણે પણ એવું કરવા વળગી જતા હોઈએ છીએ। મિત્રો એ ઠીક છે, પરંતુ તમે જ

आप आकाशवाणी पर सांभळी रह्या छो समाचार नो जीवन प्रसारण आप अमारा यूट्यूब चेनल AIR न्यूज गुजरात पर सांभळी शकशो। वधु समाचार माटे अमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/jio अने अमारा एक्स हेन्डल AIR न्यूज_ABRD ने फॉलो करशो।

में हम आपको सुना रहे हैं राजकुमार वाल्टर के लिखे झलके नेम हकीम, निर्देशक है गोपाल सक्सेना। तो आइए सुने झलके नेम हकीम।

ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं

0: मेरे बात पर बैठ गए मैंने खुदपुरी बनाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चला रखा है तो जैसा की तबियत कुछ खराब है क्या क्या बताऊँ इन चार सुबह से दांत में बहुत दर्द है कसम से कहती हूँ मेरे भी नाक में दर्द आ गया है
1: क्या
0: दांत में दर्द भैया मेरी मारी तो मन का तेल लगा हमारी उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था मैंने मन का तेल लगाया पैर हम ठीक हो गए
1: अच्छा
0: लाल का तेल मगर वो नहीं बताया मैं देखती हूँ घर में सब बचा हुआ पाई हो बड़ी मेहरबानी होगी भैया मेहरबानी की क्या बात है बहन अरे फिर पड़ोसी ही पड़ोसी की क्या बात है फिर भी बात है
1: ठीक है
0: मैंने कहा कि
2: ये गर्म पानी में
0: फिटकरी भरी रखी
2: है ठीक
0: है तो मुँह तो जैसा है वैसा ही रहेगा मैं कहती हूँ खुला करो
2: अच्छा ठीक है
0: मेरी मुझे तो थोड़ी सी मिली है मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ अब ये रुई मुँह में बदो ठीक हो जाऊंगी मैं जाती हूँ
1: सारा काम
0: हुआ है जब बात
1: कर
0: दी है कपड़े दुकान बदले हैं मुँह बना रखा मुँह खोला

रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने

0: दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशयपूर्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारे भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए अनुरोध इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: पात्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए

0: प्रधानमंत्री संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन प्रयास के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीसा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो

0: जानना चाहती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही है, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। ट्रेन बहुत ही मस्ता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अम्बाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अम्बाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई है। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पट्टन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलबंदर मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने हॉर्मुज जलबंदर मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कांट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोप

योग कल्याण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और अमर किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार।

चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम माउंट कार्मल हाई स्कूल से। आज हम इधर मेरा भी स्कूल में है एंड हमें 10 लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। भाई बहन कोर्स लिया है, मैं अभी 10वीं परीक्षा पास करी है और मैंने 97.89 किया है। मैं मातृसहायनी विद्यार्थिनी हूँ। हमारा रिजल्ट पास है, हमारा माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे सबके मेहनत के परिणाम से आज हम लोग ज्योति एंड एल एस स्कूल में आ गए हैं। यह हमारे फेलिसिटेशन है। सेंट जेवियर स्कूल भुज में 43A1 आ गया है एंड मैनेजमेंट एंड ऑल बहुत मस्त है। तो हमने सर्टिफिकेट एंड मेडल्स मिल गया है। विनोद भाई चावला पास थे। हमारे नाम

0: बस है, उसमें 107 यात्री या 180 यात्री अभी जो से है उसकी वजह से प्रतिदिन हमारे लगभग अगर पूरे साल का एवरेज निकाले तो 800 यात्री प्रतिदिन लगभग यहाँ से आवागमन करता है। ईयरली करीब हमारा जो है इस बार जो है 2,80,000 के करीब पिछले साल हमने जो है रिकॉर्ड यात्रियों को यहाँ पे सेवा दी थी, तो उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत थे। और यहाँ पे जो है एक तो टर्मिनल का जो रिकन्फिगरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो मिशन 2047 के अंतर्गत है, उससे हमारी यात्री सेवाएं जो बढ़ के प्रति घंटे की जो है 540 से यात्रियों की संख्या हम 1200 यात्रियों को प्रति घंटे जो सेवाएं दे पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा एयरपोर्ट का जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा होता है उसको भी एक्सपेंशन का हमारा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है, उसमें भी हमारे 5 यात्री विमान जिसमें 3 बड़े 180 के एयरबस 321 और 2 कम से कम 80 सीटर के विमानों की मंजूरी मिल गई है। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि प्रति घंटे में हम 1200 यात्रियों को आवागमन की सुविधा दे पाएंगे। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ATC जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं उनकी टीम आई थी, तो उन्होंने जो है एयरफोर्स के सभी लोगों से मुलाकात की और एयरफोर्स के प्रबंधन ने ATC साथ ही साथ इनके AOC साहब ने पूरा वादा किया है कि आप बेशक कितनी भी फ्लाइट लेकर आए सुबह से लेकर शाम 8-9 बजे तक हम आपको सेव करेंगे। इवन दैट इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आप भीड़ बढ़ाते हैं रात में तो वो बोर्ड सहयोग के लिए तैयार है, तो इस बारे में तो निश्चित रहे कि एयरफोर्स समय जो है पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार है।
1: સાથે સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં પૂરો થયો, ફરી મળીશું આવતા સોમવારે એક નવા અંક સાથે। નિર્માણ અને રજૂઆત અશરફ માથવાણી, સંકલન પરેશ મારુ, પ્રસારણ આકાશવાણી।

0: कर रूपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बटने भी मान लेंगे। झगड़ा चाहिए मानने के लिए तो रूपी नैयर कुछ भी बगैर सॉन्ग राइटर के, मैं दूसरों की बात नहीं करता। और अब 50% शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी

सभी सखी मनपसंद लेकर आज के फनकार जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो है आज के फनकार।

चिड़ियों खास रहे या दूर रहे, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है। मन की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

बचपन में बड़ा नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौते संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वे जन्मे थे। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। दूसरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई। तब निर्देशक नाना भाई बकेल की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

पहला एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो दिव्यानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। दिव्यानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को दिव्यानंद ने कॉपी की और दिव्यानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने दिव्यानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे दिव्यानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक दौर बन गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे। मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। उम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित

जीत के सिर पर देवर मंत्र ने सुनैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुनैया के लिए भी ये फिल्म यादगार थी।

ये कहता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्करण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत है, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार

के इन अफसर बन रही थी। तो सचिन देवर्मन ने सुरेगी के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन सैयद खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरेगिया ने देवर्मन से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरेगिया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरेगिया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरेगिया ने गाया।

0: शुक्रिया। विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक के दीवाने थे, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: संगारिन के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कॉपर आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद है, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कॉपर ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब दो साल बाद एक दिन फिल्म विजय मंडल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी। उठो उठो, देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आई है। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी

Salta और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो जहाँ और खुर्शीद सैयद के उस पार चली गयी, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रही। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया, अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने महमूद रफीक, दरक महमूद जैसे

दशक में एक दौर ऐसा आया जब सवैयों की फिल्में चल नहीं रही थी। इसी दौर में सुहराब मौवी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्म नहीं कर सकती थी। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी 2004 में उन्होंने इस फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और

आज के फनफेयर कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध आलेख और सुर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है। हमारे मदहोशी के बारे में जवानी का तो यही

इसमें नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना, आंखों में सुरूर लबों पर मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

दो रुपए का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा, गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।

मेरे यहाँ वो गुलशन अब वो हवा भी तो नहीं है, समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिचो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को

0: एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारे भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीचर ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियर पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कांट्स ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और केरल में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा

0: और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहीं से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में? ठीक है।

0: किया है, उसका समान क्या करेंगे? समय की उनके लिए न्याय नहीं है, सबके लिए अलग अलग न्याय है। एक समान चाहता है कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का स्लोगन दिया हुआ, इसको पूरा करें।
1: एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: वो चीजें हैं, केवल घर का छत इसका काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस के चूल्हे भी चाहिए, उसमें लाइट भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए।

स्टार्टिंग बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी स्टार्टिंग ऐसे एक से बढ़कर के काम ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई है और सब योजनाओं में और अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े लाइवलीहुड की योजना भी थी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जीवन दीदी की व्यवस्था थी लखपति दीदी हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्कीम की व्यवस्था आमदन हो सरकारी गरीब आदमी को सुविधा है जितने

दिल्ली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी आवश्यकता उतनी नहीं थी आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी

0: खास तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
1: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं।

साल में दोगुने से भी ज्यादा लगभग ढाई गुना ये वृद्धि हो गई है और हमारा है कि 2047 तक जब अभी 5% और कम हो गई है तो जब आबादी बढ़ेगी जमीन उतना ही है इस विषय आएगी उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है

सेवा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा टाइम मिलता है, थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। आरटीएससी बन गई है, मेट्रो

एक बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, सबसे ज्यादा मोटो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हरियाणा, थर्ड नंबर वन मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़ी है। आरटीएस मेरठ जो अपने से दो ढाई घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से भर

0: from the insurance. Otherwise, well, to make it, but everybody comes from the same. But this time, it was not probably because of the same.
1: Okay, but एक चीज और इंसानों को डेवलप करने के और इतनी सारी चीज मच्योर बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीजन की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में अब देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, और ये कहें कब तक इस पर एक कम्प्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझेंगे?

0: बोर्ड बनाए गए, उसमें जो केंद्र को सहायता करने के लिए सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाएगा वो लगाएगा, यूएलबीज को भी फाइनेंशियल स्टैंड किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। और उन्होंने पीछे अमृत वन अमृत को योजना चलाई, इसलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी स्वच्छ भारत मिशन में बनाया कि जो सीवर सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने समस्या वैसे ही बहुत आने वाली है, उससे समस्या हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर टू टियर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, तो ये हम पूछे आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में भारत के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने

0: कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, कितना आगे जाना है?
1: देखिए, मैं इस पर

उसकी डिजर्व मशीन में साफ हो जाएंगे और उसका जो इंटरेस्ट है वो राज्य कर लेगी। केवल एक लाख के बजाय एक हजार ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 2000 का फर्स्ट ट्रांसफर वापस करता है तो अगले साल में वो 20000 रुपए का ले सकता है।

सारी बात हुई है, अभी मेरे घर में ये कम्प्लीट हुआ। तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहे, एक बात तो मैं ये समझ गया था, तो क्या उसकी विशेषता है। दूसरी चीज है, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन

So how much can I delay to consult each other to come on one solution for a problem is to contact my friends who are there or SKA is simply तेरा अधिवेशन बारह हो चुकी तेरह अब चल रहा है हर वर्ष उन पांच देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके

हमारी पावर की हो रही है, लोगों से पावर। अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स मिक्स की मीटिंग अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन एक दिन दो दिन। आज भी सितंबर में शायद ग्यारह बारह सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन ग्यारह देशों के हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको शेयर करेंगे और वो फिर बैठे पास सब के निचो निकाल करके कानून

करके उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक एक करके उन्होंने समझिए समय बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बने उसका एक फिर हमने जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको यूज किया है जिसमें सब सहमत हुए, उसमें कोई पर्टिकुलर

ही पकड़ेंगे, न तो उतरेंगे, बल्कि हम सिस्टम ऐसे बनाएंगे कि अगर उनका सरप्लस हो जाए स्टोर ऊर्जा, तो सरप्लस को ग्रिड में लेकर के उसमें से पैसे निकल जाए तो ऊर्जा घाटा बन सकता है वो, तो उसमें से

थोड़ा कसा कभी हम अपने पास चले जाते हैं या तो उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज वहां तक हमारे प्रोजेक्ट जो होता है टारगेट है 1 करोड़ सूर्य जल बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी हमारे पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही है उनको दूर करने के लिए हम प्रदेश

0: आप सब परिकास सबकी एकता बनाने में लगेंगे और ये सरकार एक कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रेल रोड मैं समझता हूँ कि देश पहले ताकि सब बाद में इससे बड़ा और कोई रेल रोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। This is Akashwani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lead Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
3: Over the last 12 years, India has tried to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy and rebuild trust between state, enterprise and citizens. Yeah. Manish, make a great

मित्रों हमारा आप सुन रहे हैं हमारा समाचार सेवा द्वारा विशेष श्रेणी। आज नो विषय है तो विदेश नीति। आकाशवाणी अहमदाबाद।